0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षापछि कीर्तिपुर स्थित बागमती

0: Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: Toilet Pony, Extreme Energy Drink.
1: हाईटेक नर्सरी में उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी विभिन्न बिरुवा को भरपर्दो गंतव्य कल्प वृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहां लोरसल्ला, टिमूर, कागती, सुन्तला, जापानीज हलुआ बेद, जापानीज नस्पति, रेड किबी, ग्रीन किबी, मेकाडेमिया लगायत विभिन्न फलफूल तथा जड़ीबुटी जन्य बिरुवा उपलब्ध छन्। सीजन अनुसार का बिरुवा खरीद गर्न आज सम्पर्क गर्नुहोस्। संस्थागत खरीद में विशेष छूट को व्यवस्था पनि छ। व्यक्तिगत रूप में 100 भन्दा बढी बिरुवा खरीद गर्दा पनि छूट को व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क व्यक्ति ईश्वर थापा, फोन नम्बर 9849185662 9849185662। कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालयसँगै।
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

अवसरमा खाने तिमलाई दाइर चिउरा मागमा खानी फुरेउला थाहा छैन क्या।

0: मालक छुम पक्कल
1: मालक मालूम दे
0: ये लाडू दे
2: लाडू मालूम बड़ा बनो ना
0: लाडू का आठ
1: मालूम दे
0: मालूम मेरा नाम मालक्ष्मी हो और नंबर आठ
3: नमस्ते मेरा नाम शिवद्रा थापा हो और नाम तीन हो बुलंगा दिस
4: मेरा नाम और नंबर आठ लाडू
5: मेरा नाम नारायण कुमारी खत्री वन नंबर आठ मालूम बड़ा को
6: नाम पंपा ओली लादू गाविसा वन नंबर आठ मालूम
7: लादू गाविसा वन नंबर आठ मेरो नाम थी मनमाया बर्थ
8: नमस्कार मेरा नाम थी राधिका ओली लादू का आठ मालूम
9: मेरो नमस्कार मेरा नाम लक्ष्मी ओली वन नंबर आठ मालूम
10: मेरो नमस्कार रीता कार्की हो नाम मेरो लादू गाविसा वन नंबर
11: मेरो नाम रोना कार्की लादू गाविसा वन नंबर आठ

छैन आउने जाने पाइन खबर पनि माइती छेउ के घर माइती छेउ के घर भयो धेरै दिन भोगा छैन किन माइती छेउ के घर।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 छ आषाढ कृष्ण पक्ष सन् 2026 जुलाई 12 तारिख आषाढ 28 गते आइतबार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी